0: Radio NRN 99.1 समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

0: विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा।
1: हरि शरण, म लक्ष्मी भुसाल सुनिरहेछु रेडियो एनआरएन 99.1।

0: Worldlingo festivity offer अब pound host एक वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box मात्र रूप 12 से प्रति महीना में सर्थहरू लागू होने चाहिए छिटो बने गई Worldlink
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज़।

नेपाली गीत संगीतको बजारमा सुपा देउराली म्युजिक प्रालीको गौरवमय प्रस्तुति लक्ष्मी भाटको लोक दोहोरी एल्बम बाँच्दिन म धेरै। स्वर मुकेश भट्ट वासुदेव, प्रतुल साघर्ती, लय लक्ष्मी भाट, शब्द लक्ष्मी भाट, एरेन्जर यमन खनाल, पिआरबिटी 6054-1375, मेल पिआरबिटी 6054-1384, फिमेल उत्पादक सुपा देउराली म्युजिक प्राली, प्रबन्ध निर्देशक यमन खनाल, 9849404000।

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीरा मं फागुन देखि जेठसम आगो लगने डर आपनो

गर्मी में आयो हजूर सुकी सक्यो घास वन में आगो लगो भने जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भने वन जंगल खाँच वन में हुने जीव जंतु ने साह्रै पीर मान्छ फागुन देखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो

0: कम्प्युटर एजुकेशन ब्याच 11 दमौली फोन नम्बर 0658 91 880 0658 91 880
1: शाखा गोर्खा रोड आबुखैरेनी फोन नम्बर 0658 45 391
0: वर्किङ टुवर्ड्स एक्सिलेन्स।